कौडी बदले त्यागे रतन छोड़ जाहे वाहू का जतन सो संचो जो हो छी बात माया मोया टेडो जात अभागे तै लाज नाई सुख सागर पूरन परमेश्वर हर नाचे त्यो मन माही अमृत कौड़ा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो डीठी कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिछू डसाना ओ माया कारण सदही झूरे मन मुख कवै न उस्तत करे निर्भव निरंकार दातार तिस स्यों प्रिय।

सदगुर के चरण तोय तोय पीवा, सदगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुरु नानक जप

चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा। चरण पखार करम गुर सेवा बार जाऊं लख बरिया।

चालीस चलिए, सिख ने कड़ी चाली चलनी है जेदे नाल गुरु प्रसन्न हो ओ चाली चली, जेदे नाल गुरु की प्रसन्नता मिलनी ओ चाली चली, दूजी नहीं चली। सिख कदे भी वह चाली नहीं चलता जेदे नाल कलगियां वाला खुश ना हो। गुरु नूं खुश करिए प्यारी साध संगत, जे दुनिया नूं खुश करना चाहते हैं तां गुरु नूं खुश करिए। गुरु किस ते खुश हुंदा है? जिहड़ा गुरु दी चाली चल के गुरु दे हुक्म च रहिंदा। जो भी गुरु का हुक्म, अमृत छकना, सोने दाड़ी केस रखना, गुरबाणी नाल जुड़ना, सच धर्म की किरत करनी, सच बोलना, यह है गुरु की चाल। तो जिहड़ा सिख है वह गुरु की चाली चलेगा। फिर गुरु की चाली केड़ी? हजूर

की सत्संगत आओ साहिब गुरु रामदास पातशाह दे उचारण कीती हुई शब्द दे रूप विच पड़ताल हर गुण गावो जगदीश राग कांदा और शब्द धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी का।

श्रवण सोए सुन निंद बीजा, रसना सोई लोग मीठे साद, मन सोया माया विस्माद।

माली ने पानी दे दे के राखी कर करके सुंदर बगीचा तैयार किया। वेख वेख फुलां नूं खुश हुंदे बगीचे वल झाती मार मार के प्रसन्न हुंदे, मेरी मेहनत सफली होई। कोलों दी इक राही लंघिया, आवाज मार के राही नूं आखन लगा, ऐ राही आ मैं तैनूं अपना बगीचा विखावां। किड्डे सुंदर फुल खिड़े होए हन मेरे बगीचे च, राही मुस्कराया, आखन लगा रात नूं आवांगा शामी आवांगा आके तेरा बगीचा वेखांगा। राही तां टुर गया पर माली गाफल हो गया, जागया नहीं सौ गया, सुता रहा जदों जाग खुली ते सारा बाग मिध्या होया। कोई ऐसा जानवर आया, कोई गऊ मज अंदर आई जेड़ी फुलां नूं मिध मिध के, किधरे वेखो अद्धे फुल खादे होए ने, कोई खुरां थले दिते होए ने, कोई फुल उधर डिगा पिया, कोई इधर पिया, सारा बाग ही पलां विच उजड़ गया। एक एक फुल वाले निगाह मार मार के रोई जांदे, ये की बन गया, ये पलां विच सारा बाग ही उजड़ गया। गोडियां विच मुंह दे के रोई जांदे, ये हो की गया, सोच सोच के हैरान हुंदे। कोलों दी जदों राही आया ते आखन लगा हुण विखा अपना बगीचा, ते राही दा हथ फड़के माली कहंदा, एथे मेरा गुलाब दे बूटे सन, एथे चंबेली सी, एथे औ फुल लगे सन। एक एक फुल दा नां लै लै के, बूटे दा नां लै लै के विखाउंदा है, पर कहंदा हुण ते बगीचे विच कुछ भी नहीं रहा, सारा बगीचा ही उजड़ गया है। ऐसा एक पै गया, कोई काल रूप पै गया कि मेरे बगीचे नूं पल्लां विच उजाड़ के रख दिता है मिंटा।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, असी अपने रोजाना दे रहरास दे पाठ दे विच ये शब्द ते पढ़ते हैं, पर जो इस दे विच विचार पेश किया गया है उस ते असी कदे रुकते नहीं हैं। इस करके असी ना रुकन करके जो इस पंक्ति दे विच साड़ी एक दर्दनाक हालत का जिक्र किया गया है उसनूं असी अवॉयड कर जाने। आप जानते हो कि अगर कोई चीज गल जाए तो उस दे विच नंबर एक कीड़े मकौड़े पैदा हो जाते हैं, वो बीमारियां का घर बन जाते हैं, और दूसरा उस दे विचों दुर्गंधी आती है, उस दे नजदीक होना भी मुश्किल हो जाता है गली हुई चीज के। और गलियां हुई चीजां नूं असीं बाहर फेंक देने, बाहर सुट देने, और असीं कदी ये सोचा है अपने मुतलक कि असीं भी गल गए हैं? ऐसा असीं नहीं सोचा। अगर असी ऐसा सोचिए कि असी अगर साडे शरीर का कोई अंग गल जाए तो असी डॉक्टर के पास जाने, उस उत्ते मरहम पट्टी कराने, उसनू टक के रखते हैं, क्योंकि गलिया होया अंग खुद नू भी देखने अच्छा नहीं लगता, दूसरों नू भी देखने अच्छा नहीं लगता, उसनू साफ रखते हैं कि उसके कीड़े मकौड़े ना पै जाए। और गलिया होया अंग जदों कभी बिल्कुल ना ठीक हो सके फिर उसनू कट देना पड़ता, खत्म हो जाता, क्योंकि ओ गलिया होया अंग एक पूरे दे पूरे शरीर नू भी गाल सकता है, खत्म कर सकता है। तो महाराज जी ने फिर लफ्ज जो वर्त्या है उस तो ये सिद्ध हुंदा है, गुरु साहब साडे जीवन दे प्रति आख रहे हैं, इस काया दे प्रति आख रहे हैं, इस शरीर दे प्रति आख रहे हैं कि जो तमाम गुण सत नुक्ते जो खूबसूरतियां जो महिमा जो ब्यूटी इस काया दी आप जी ने पिछले कीर्तना च सुनी है सत नुक्ते कि ये दुर्लभ है, ये रब दा मंदिर है, ये रब दी कामणी है, ये अकाल पुरख वाहिगुरु तक पहुंचने दे वास्ते एक कोड़ी है, तमाम सारियां जूना दे विचों ये श्रेष्ठ है, उत्तम है। और आखिर च महाराज जी ने इसनू बहुत ही उच्चा दर्जा दिंदिया होया ये आख्या कि ये एक सरोवर है, सरोवर, और सरोवर दे विच इशनान कीतियां सब बीमारियां हट जाया कर दिया, सरोवर दे विच कमल फुल हुंदे हैं, खिले हुंदे हैं, शीतलताई हुंदी। गुरु बाबा जी आखदे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु
ओ परम ज्योत, परम आत्मा जो साड़ी सोल है, उस दे नालों दूर जान करके, उस दे नालों विथ पैन करके, उस दा ध्यान साडे ध्यान चो निकल जान करके, उस दे नालों टुटन करके, उसनू भुलन करके, कहिंदे की होया है इस काया दे सारे ही जितने गुण सन ओ गल गए, सारे गुण गल गए। हुण असीं गले हुए लोग, सारी कम्युनिटी गले हुए लोग, सारी ह्यूमन सोसाइटी गली पई। और दसो इसका सर्वाइवल कित्थे होएगा, किस तरह होएगा? ये शब्द सिर्फ कोई एमें पढ़ देने वास्ते ही थोड़ो हन, नितनेम कर लिया तो फर्ज पूरा हो गया। इसनों तो बहुत ध्यान दे नाल दिखना है। महाराज जी तो बहुत ही खास, बहुत ही जरूरी गल कर रहे हैं। जिस तरह किसी नु कैंसर होया हो, अगर उसनों कोई दस दे के तेनू कैंसर होया है, लिख के दे दे कि तेनू कैंसर होया है, तो उसनों रोज पढ़ी जावे, रोजाना उसका पाठ कर ले उस लिखे हुए पर्चे का कि मैनू कैंसर होया, कैंसर होया, कैंसर होया। ऐसा कभी हो सकता? एक दफा पता लगन की गल, शक पैन की भी देर है कि इंसान फौरन जाके टेस्ट करवाएगा और फिर उसनू रिमूव करवाएगा, सर्जरी कराएगा। पर गुरु बाबा जी कहते हैं इतना भयानक कैंसर के पूरे दे पूरे गल गए हो अंदरों, और असि फिर उसनू रोज पढ़ देने हैं और बहुत कंफर्टेबली रही जाने। जैसा कि सानू अपने गल जान की कोई तकलीफ ही नहीं होंगी, असी गले पे हाँ ना, असी अपने आप को दुर्लभ समझते हाँ ना, असी मंदिर बन सके ना, असी सरोवर बन सके ना, असी तमाम सृष्टि दे विच्चों उत्तम ही बन सके, सगों इस तमाम रचना नू खराब करन दे विच साड़ी कंट्रीब्यूशन है, इस प्लैनेट नू डैमेज करन दे विच साड़ी कंट्रीब्यूशन है, इनवायरमेंट नू डैमेज करन दे विच साड़ी कंट्रीब्यूशन है। सो असी उत्तम नहीं बने, पशु पंछी परिंदे कीड़े मकौड़े दे आर नॉट डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट, ओनली ह्यूमन बीइंग्स, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स दे आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली डेंजरस टू द होल एनवायरमेंट। उत्तम असी किवें हो? महाराज जी ने यह आख्या, इंसान तेरे नालों सूर चंगा है। कबीर जी ने आख्या साकत ते सूकर भला, साकत इंसान नालों सूकर जो है वो अच्छा है, चंगा है, राखे अच्छा गांव, क्योंकि गांव नू साफ सुथरा रखता है, गांव की सफाई कर दी। साकत ते सूकर भला राखे अच्छा गांव, पशु नू चंगा आख्या, पशु मिले चंगियाईयां, खड़ खावे अमृत दे। कहते पशु चंगा है, घा खांदा है, खड़ खांदा है और अमृत वर्गा दुध दिंदा है, नाम विहूने आदमी रिग जीवन कर्म करे। तो गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द जो कि असी रोज ही पढ़ते हैं, पर इस दे विच्चों अपनी गली सड़ी तस्वीर नू असी नहीं देखते, पढ़ के अगान लंघ जाने हैं। गुरु बाबा जी ने इस शब्द च यह आख्या है कि ह्यूमन फॉर्म दे जितने भी गुण सन, जिस तरह गुलाब का गुण की है कि उस दे विच्चों सुगंधी आती है, उस दे विच्चों कोमलता नजर आती है,
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗੀਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅੰਬ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਲੱਭਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਅਗਰ ਗਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਟ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ

जितने भी इसके छिद्र हन, छेक हन, होल्स हन शरीर दे, उन्हां दे विच्चों अपवित्रता निकलती है, गंदगी निकलती है। कन चो, अखियां चो, नासकां चो, मुंह चो की निकलता है, अपवित्रता निकलती है, गंदगी निकलती है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध इसने सिर्फ अपने अंदर उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं प्रगट करके ही होना सी, उस तो बिना यह शुद्ध नहीं है। सुची काया हर गुण गाया, हरी दे गुण गाउण नाल ही यह काया सुची हो सकती है, वरना यह सुची नहीं हो सकती। कहिंदे यह नापाक है, किथे मंदिर, किथे इस नूं मंदिर वर्गी बना देना सी, ते किथे इस नूं नापाक आख्या है, अपवित्र है। तीसरा नुक्ता, गुरु साहब आखदे हन यह डरौनी है, यह काया कहिंदे

अगर इसने मंदिर नहीं बनाया तो जदों इस दे विच्चों रूह निकल जाएगी कहिंदे यही दुर्लभ डरौनी लगेगी, इसके नजदीक खड़ना मुश्किल हो जाएगा, खड़दियां डर लगेगा, यह डरौनी बन जाएगी। फिर आखते हैं

अगर इस काया दे अंदर ए पोटेंशियल है कि ए काया नू बनाउन वाले नू ए बुझ सकती है, रियलाइज कर सकती है, उस दे विच इमर्ज कर सकती है, उसनू समझ सकती है, तो कहिंदे अगर उसनू नहीं ए समझदी ते ए पशु तो प्रेत तो मुगत तो भी बुरी है, प्रेत तो भी बुरी है, पशु तो भी बुरी है। चौथा नुक्ता, गुरु बाबा जी आखदे हन एक काया कमली है, मूर्ख है, कहिंदे हन

0: फिर आखते हम ये मूर्ख है,
1: आसा बंदी मूर्ख दे
0: आसा बंदी आशामा बनी फिरती है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है। इस मूर्ख नु ए भी नहीं पता कि हो सकता कल दा दिन तेरा अखीरला दिन होवे, कल दी रात तेरी आखिरी रात होवे, अखीरला श्वास तेरा नेक्स्ट ही होवे, हो सकता आ साल तेरा अखीरला साल होवे। पर ए आशामा बनती है बड़ियां लंबियां लंबियां, कई बंदे कितनी उन्हां दी उम्र हो जाएगी फिर भी आखणगे हाले असी जदों सैटल हो गए तो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सैटल पता नहीं कदों होणगे, सो कई लोग सारी उम्र सैटल ही नहीं होंगे, देन दे फाइनली सैटल इन द ग्रेव, फिर वो सैटल हो जाए। गुरु महाराज जी आखदे हैं ए मूर्ख क्योंकि इसने अपनियां गलत आदतां बना लईयां हन, एडिक्शंस बना लईयां हन, सुभा बना लए हन, अते उना चीजां नू वरतदी है जिहड़ियां चीजां इस नू कमजोर कर दियां हन। तो कहंदे ए मूर्ख भी है।

अगली गल पंजवन गुरु बाबा जी आखते हैं अगर एक आया मंदिर ना बनी सरोवर ना बनी तो यह फिर दुखां दा घर है या तो यह रब दा घर है नहीं तो फिर यह दुखां दा घर है क्योंकि इस दे विच इतनियां बीमारियां पैदा हो जांदियां हैं जो जो कमजोरी आंदी है बुढ़ेपा आंदा है इतनियां बीमारियां पैदा हो जांदियां हैं कि इंसान फिर उन्हां दियां दर्दां दे नाल घुलदा घुलदा इस दुनिया दे विचों जांदा है। सब तो ज्यादा पेन जो है इंसान में फिर एक काया दी सर्जरी जुंदियां हैं की कुछ हुंदा है कहंदे हन यह शरीर ही फिर साडा एनिमी बनता है। बड़ी कमाल की गल महाराज ने बाणी च लिखी है कि यह शरीर ही अगर नाम नहीं जपया फिर साडा एनिमी बनता है साडा विरोधी बनता है। बाणी च आखते हैं इस तरह कहंदे हन

जितने रस शरीर के तेते लगे दुख उतने ही ज्यादा दुख लगे, उतने ही ज्यादा मुश्किल दे विच पै। तो पंजवा नुक्ता यह है कि अगर यह सरोवर ना बनिया, अगर इसनु असी दुर्लभ ना बनाया, अगर इसनु रब दी सजाई हुई दुल्हन ना बनाया तो इसने तुहानू दुखी भी बहुत करना, बहुत दुखी करना है। और उस दुख दे विच कोई साथ नहीं दे सकता, उसनु कोई शेयर नहीं कर सकता, वो दुख तुहानू खुद अपने आप चलना पैना। ए दुख दा घर है। अगला नुक्ता छेवां, गुरु महाराज जी इत्थे छेवें नुक्ते दे विच ते बहुत ही चोट वाली गल करदे हन, कहिंदे हन ए वेस्ट गया है, निष्फल गया है, व्यर्थ गया है। अते आखदे हन पंक्ति दे विच

सगल शरीर आवत समतान, बाकी सारे ही शरीर जड़े हैं वो मरण तो बाद काम आते हैं। किसी की स्किन काम आती है, किसी दी बोन्स काम आती हैं, कईयां दी दवाइयां बनदियां हैं, कईयां दी स्किन साडे उत्ते पहनन दे योग हुंदी है, असीं पहन लैंदे हां। लेकिन इंसान दी स्किन उतार के पहन के देखो, मरे हुए इंसान दी स्किन नूं उतार के पहन के देखो, पहनी जा सकदी है? कहिंदे सगल शरीर आवत सब काम, सारे शरीर किसे ना किसे काम आ जांदे हन मरण तो बाद। ईवन सप वर्गा जहरीला जानवर भी उसकी स्किन भी काम आंदी, लेकिन इंसान दा शरीर ऐसा है जिहड़ा किसे काम नहीं आंदा। निफल मानुख, ए मानुख दा शरीर जिहड़ा बिल्कुल निष्फल जांदा है। बस एक ही काम इसने करना सी, नाम जपन दा। अगर ओ ने कीता ते कहंदे निफल मानुख जपे नहीं नाम, ए बिल्कुल निष्फल हो गया। ते इस दे सारे गुण जो हन ओ गल गए। एक दफा इस पंक्ति नूं सुनो अते नाले अपने अपने अंदर इस नूं रिफ्लेक्ट करो अते सोचो कि ये सच है, ये सही है, कि मैं इस दे नाल सहमत हां, कि मेरी जिंदगी ही ते नहीं अजिही, कि मेरी ही जिंदगी अजिही ते नहीं। ए जो शब्द वर्त्या है, त्रिक त्रिक खाया, त्रिक त्रिक सोया, त्रिक त्रिक कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिक शरीर कुटुंब सहत से, किते मेरा खाना पीना ही उसदे त्रिकता नहीं है, त्रिकारता नहीं है, किते मैं अपनी इस मंदिर वर्गी काया नू ऐथे तो नहीं पचा बैठा हां, तो फिर मैं किस तरह सिर उच्चा उठा के चलांगा, किस तरह अपने आप नू इंसान समझांगा, किस तरह मैं दूसरों के वल उंगली उठाव,

दूसरे शब्द शरण गुरु जी भरत नारायण पदार्थ गोसाग पर्याय वाणी गुरबाणी लागे तिन हथे।

धारंग मजे ब्रह्म तार तत हर को उपजे राग सारंग उकडे तान तरंग रंग अत ज्ञान गीत बंदानंग चक चक रहे देव दानम मुन छक छक।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साढ़े प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया सी, इसका भाव देर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड, देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है। इस शरीर मेरिया इस जग में आए के इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की कम कीता है। भाई गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जग आए, तेन शरीर मिलिया सी वो शरीर दे नाल तू की पाया, की अचीव कीता है। देखते हैं कि यह शरीर तेन दिता सी इस दे नाल तू कुछ खास पाना सी, तू कोई कम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिस दे वास्ते ए इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, भूडी चाल इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरबा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी दी सारी ओहो गलत

सो प्रकरण आरंभ किया से अकाल पुरख वाहिगुरु ने सानू शरीर दिता है ते इस शरीर का कोई खास मिशन है ना ते सानू शरीर दे मुतलक ही पता है कि एक ही वस्तु है ते ना ही सानू मिशन दे मुतलक पता है कि मिशन की है। तो उस दे वास्ते दास ने चुनिया सी कि आओ पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विचों असी शरीर दे मुतलक इनफॉरमेशन जो सानू दित्ती गई है ओ सरवण करिए उसनु हासिल करिए ओ सुनिए कि ए वस्तु की है शरीर वस्तु की है। तो दास ने आख्या सी कि उस दे लई महाराज जी तो 13 नुक्ते 13 पॉइंट्स जो हन ओ मिलदे हन जिथे सानू ए दस्या जांदा है कि शरीर की है। तो जो मैं कह चुका मैं एक दफा फिर उन्होंने रिपीट करता हां। नंबर एक, शरीर दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ, जिहड़ी ना असी बना सकते हां ना असी खरीद सकते हां, यह सिर्फ अकाल पुरख की कृपा दे नाल प्राप्त हुंदी है, इस उते किसी का जोर नहीं है। यह दुर्लभ चीज है, दुर्लभ चीज वो हुंदी जिसकी कोई कीमत ही ना पा सके, दुर्लभ वस्तु है साडे सबना दे पास। और दुर्लभ वस्तु हुंदिया होया असी अपने आप नू बड़े सैड, बड़े डिप्रेस्ड, बड़े मायूस, जिदा साडे पास कुछ भी नहीं है इस तरह फील करते रहने, हालांकि साडे पास एक दुर्लभ वस्तु है जिहड़ा कि 84 लाख जून नू भी चांस उस नहीं, नहीं मिलता जिसका वो साडे पास है, उसकी असी वैल्यू नहीं करते, सानू उसकी कदर कीमत का ही नहीं पता। पहली गल बाबा जी समझाते हैं कि शरीर दुर्लभ है, तुसी महान अमीर हो क्योंकि इस तो वध के जो कीमती शह होर कोई नहीं है। दूसरा नुक्ता अर्ज किया सी कि ए रब दी कामणी है, रब दी औरत है, रब दी पत्नी है। काया कामण अत सवाल्यो फिर वसे जिस नाले, फिर सच्चे ते सदा सुहागण गुरु का शब्द संभाले। ए सच्चे फिर दे अंदर होण दे नाल ए सुहागण है, पर इस सुहागण नू जे फिर तो वाहिगुरु तो दूर ले जाओगे, दुनिया दे विच जाके इस नू गवा दोगे, स्वाद बाद ईरख मद माया दे विच इस नू डोब दोगे, ये कुमला जाएगी, क्योंकि फिर तो दूर ले जाओ पत्नी नू तो वह कुमला जाएगी, उदास हो जाएगी, वह मर जाएगी। इस शरीर नू वाहिगुरु की संगत च रखो, साधु संगत च रखो, गुरबाणी की संगत दे विच रखो, तो यह शरीर जो है वह हरिया भरिया होएगा, यह मौलेगा, यह खिलेगा। इसनू अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर ले जाओ, वो इसकी जिंद जान है, ये मायूस हो जाएगा, मायूस हो जाएगा। ये रब दी कामणी है, इसनू रब दे नेड़े रखो, इसनू उस तो विछोड़ो ना। तीसरा नुक्ता रखिया सी, ये मंदिर है, काया महल मंदिर घर हर का, जिसमें राखी जोत अपार। जिस तरह किसी मंदिर दे नाल ट्रीट करते हो उसे तरह इस दे नाल ट्रीट करो। मंदिर अंदर गाली नहीं दिती जा सकती, इस मंदिर दे नाल भी गाली नहीं दिती जा सकती। जो वस्तुआं इस मंदिर च नहीं लियांदियां जा सकदियां, वह वस्तुआं इस मंदिर च भी नहीं पाईयां जा सकदियां। इस मंदिर दा तिरस्कार नहीं किया जा सकता, निरादरी नहीं की जा सकती, इस मंदिर नूं भी अब्यूज नहीं किया जा सकता, इस दे लई भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होया जा सकता। अगला नुक्ता सी, जो सारे ब्रह्मंड दे विच है, सारे यूनिवर्स दे विच है, जो कुदरत दी कला अकल कला भरपूर रहे, ये सारा जगत सारी रचना वाहिगुरु दी अकल इंटेलिजेंस एंड कला आर्ट, इंटेलिजेंस एंड आर्ट दे नाल सारी जितनी भी रचना है भरी पई है, कहिंदे उह सारी दी सारी इंटेलिजेंस एंड आर्ट तुहाडे इस शरीर दे विच है, जो खोजे सो पावे, जो उसनू खोजेगा सो पा लेगा। अगला नुक्ता सी कि एक कोड़ी है, शरीर कोड़ी है और तुसी इस दे सवार हो, पर हुण चक्कर उल्टा हो चुका है, जो कोड़ी है वो सवार दे उत्ते सवार होई पई है, वो सवार दा आखा नहीं मनदी है, कहिंदे इस दे उत्ते सवार हो वो भाव, इस दे उत्ते मास्टरी अचीव करो, इस दे स्लेव ना बनो। जदों सानू एडिक्शंस हो जांदियां हन उदों असी बॉडी दे स्लेव हो जाने हैं, कहिंदे इस दे स्लेव ना होवो। अगला नुक्ता जो कल छेवा आख्या सी कि यह श्रेष्ठ है, सब तो उत्तम है, बाकी सारिया जूनिया तो कहिंदे पानी भरवाया जा सकता है, यह सब तो ज्यादा उत्तम है।
ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਨੁਕਤਾ, ਸੱਤਵਾਂ ਨੁਕਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੁਬਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

शरीर सरोवर भीतर है, शरीर सरोवर दे अंदर। कल दे कीर्तन च असी विचारिया सी ना कि महाराज जी वो जड़ी वस्तु पानी है वो है किथे, वो किथे है? कहते हैं अंतर तेरे निधान है तू बाहर वस्त ना पहाल। वो निधान, वो खजाना, वो दौलत, वो बादशाहत कहते तेरे अंदर है। अज महाराज सरोवर की सिमली दे के कह रहे हैं कि शरीर सरोवर भीतरे, शरीर एक सरोवर है जिस दे अंदर की है अच्छा है, बहुत कमाल है, बहुत खूबसूरत अच्छा है। कमल अनूप, अनूप का मतलब है जिसकी कोई मिसाल ही ना दिती जा सकती, अति सुंदर, यूनिक, अनपैरल्ड। कहिंदे एक कमल है जो इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर है। सानू पता है, सानू पता ही नहीं साड़ा शरीर की है, इस दे विच की है। शरीर सरोवर दे अंदर कहिंदे एक ऐसा खूबसूरत कमल है, एक कमल फुलां दे नाल भरिया पिया है, अते इतने वो खूबसूरत हैं कि उन्हां दी होर कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा महाराज होर की है? कहिंदे परम जोत, ओ जोत जड़ी तमाम जीवां दे विच है, सब मैं जोत, जोत है सोए तिस दे चानन, सब मैं चानन होए, परम जोत, डिवाइन लाइट, सुप्रीम लाइट, परम जोत, पुरखोत्तम, पुरखां दा भी पुरख, पुरखोत्तम, अकाल पुरख वाहिगुरु, जो तमाम नारियां नू पुरखां नू पैदा करन वाला पुरख है, ओ परम जोत पुरखोत्तम, जांके रेख ना रूप, जिसकी कोई शकल नहीं नजर आती, जिसका कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है। कहिंदे जांके रेख ना रूप, ओ इस शरीर रूपी सरोवर दे विच। तो हुण सारे इस पंक्ति दास तो बाद अद्धे दे हिस्से च बोलियो, ताकि असी अज ए नुक्ता लैके जाइए कि कमाल दी गल है, असी ते सरोवर बार संगमरमर दे नाल बने हुए पानी दे नाल भरे होयां नूं ही सरोवर समझदे रहे हां, एथे गुरु ग्रंथ साहिब दे शरीर नूं सरोवर आख रहे हैं। कहिंदे हन शरीर सरोवर भीतरे, शरीर सरोवर भीतरे अच्छा कमल अनूप, परम ज्योत पुरखोत्तमो, जांके रेख न रूप। सो ए शरीर एक ओ वस्तु है जो कि शरीर एक सरोवर है, इस सरोवर दे विच रब रूप कमल है, अते इस शरीर रूपी सरोवर दे विच ओ परम ज्योत है, ओ पुरख उत्तम है, पुरखां दा पुरख है, जिसकी कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है, फॉर्मलेसनेस दे विच है। तो असा ने अपने इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर जाके इशनान करके, इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर इशनान करना है, शरीर दे अंदर जाना है, अते इस शरीर दी अंदर दी दुनिया जो है, अंदर दा जगत जो है, उस दे विच प्रवेश करके फिर ओ जो रब रूप कमल है उसनु प्राप्त करना है। और जो ही असी उस कमल दे दीदार करते हैं, ओ कमल सुगंधी दे नाल, खूबसूरती दे नाल ब्लूम कर रहा है, खिलिया पिया है, अते उस दे नाल जो साड़ी जिंदगी है वो कमल दे फुल वर्गी हो जाती है। अंदर
कमल फुलां दा बगीचा लग जांदा है, अंदर एक बाग खिल जांदा है। तो ये सत पॉइंट आप जी की सेवा दे विच रखे हैं। अगले छे जो हैं वो कल तो असी आरंभ कराएंगे और असी इन्हां नूं नोट कर लईए ताकि सानू ये पता होवे कि शरीर की वस्तु है। ये दुर्लभ है, ये मंदिर है, ये रब की कामणी है, ये एक घोड़ी है जिस दे राही असी अपनी यात्रा नूं तय करना है। ये सब तो उत्तम है, श्रेष्ठ है, जो सारे ब्रह्मांड दे विच है वो इस दे विच है। अते ये एक सरोवर है जिस दे विच रब रूप कमल खिलिया पिया है। असी की कीता है, साड़ी ट्रेजडी की है कि ऐब तन चिकड़ो ए मन मींड को कमल की सार नहीं मूल पाई। शरीर दे विच ऐबां दा, एडिक्शन दा, स्वादां दा, बुरियां आदतां दा चिकड़ कर लिया है ते मन बस उस चिकड़ चो ही नहीं निकल सकिया, अगां कमल तक पहुंचे ही नहीं है। कमल की सार नहीं मूल पाई, कमल दी सार ही नहीं पाई। अगले छे नुक्ते आप जी की सेवा च अर्ज करन तो बाद फिर आप जी सेवा च जो कीर्तन होणगे वो होणगे कि उस कमल तक असी किवें पहुंचना है, उसके ढंग की हैं, उस दीआं विधियां की हैं। उस कमल नूं खिलाण दे वास्ते कि वो खिले उस दीआं की रिक्वायरमेंट सन, यह कीर्तन आन वाले दिनां दे विच होणगे। आप जी इसे तरह दर्शन दिओ टाइम सिर ताकि इस लड़ी नूं असी जो है गुरु बाबा जी की कृपा दे नाल संपूर्ण कर सकीए, शरीर नूं जान सकीए ते शरीर दे अंदर जो है उसनूं जान जाइए ते उसका रस्ता समझ लईए कि उसे तक किवें पहुंचना है। बस साडी समझ लो मंजिल पूरी हो गई, साडा जीवन सफला हो जाएगा। फिर मैं रिपीट करा, शरीर नूं समझ लईए और शरीर नूं समझण तो बाद इस नूं सानू साधना पैना है, इस नूं सानू फिर कढ़ना पैना है, इस दे विच चेंजेस लियानियां पैनियां हैं, इस दे विच कई सारियां तब्दीलियां लियानियां पैनियां हैं। महाराज जी आखदे हन तरत काया साध के, ये धरती रूपी काया नूं साधना पैना है। इस उते बहुत सारा कम, बहुत सारी मेहनत करनी पैनी है, वो सारा कुछ अगले कीर्तना दे विच आएगा। जदों असीं शरीर नूं समझ लवांगे इस नूं साधना किवें है वह समझ लवांगे, इस शरीर के अंदर की है वह समझ लवांगे, उस तक पहुंचने का रस्ता की है वह सुन लवांगे, समझ लवांगे, उस तों बाद असी उस अंदरले जगत की खूबसूरती नूं एक्सप्लोर कर लवांगे। अते जो अंदर साडे वस्तु नूं पाउण नूं महाराज ने कहा है उसनूं असी पा लवांगे, जीवन की यात्रा साडी सफल हो जाएगी। भूल चुक दिखेवा प्रेम नाल इस पंक्ति नूं गाओ, ए शरीरा मेरिया इस जग

सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुर की रीसे होर कच्चू पिच्चू बोल दे से कुड़िया।

0: अंत न पावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी केड़ा अंत न पार वारिया
1: अंत न पावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी
0: अंत न पावत

रामदास गुरु सच्ची सही एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर गए गुरु नानक लई त्याय अंगद ते गुरु अमरदास रामदास हुई साय अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिन दिठिया सब दुख जाए गुरु तेग बहादुर सिमरिय करना उन्हें दयावे ताए दसवें पातशाह साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाही के स्वरूप जायरा जहूर हाजरा हजूर अकल कला भरपूर साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आपकी वाणी की महिमा कहीं न जाए ध्यान

वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज्ञा भई अकाल की, चलो बंद सब संत को।

कृपा करो, दीन के दाते, मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर, लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए ही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड, ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। वट एवर यू डिजायर यू शैल रिसीव दैट रिवॉर्ड, एंड यू शैल नॉट बी अफ्लिक्टेड बाय पेन एनी लॉन्गर। काचे भांडे साज निवाजे, अंतर ज्योत समाई। ही क्रिएट्स एंड अडॉन्स द अर्थन वेसल्स, ही इन्फ्यूजेस हिज लाइट विद इन देम। जैसा लिखत लिखिया तुर करता है, हम तैसी किरत कमाई। As is the destiny preordained by the Creator, so are the deeds we do. Man tan thaap kiya sab apna, eho aavan jana. He believes the mind and body are all his own. That is the cause of his coming and going. Jin diya so chit na aave, mohe ant lipkana. He does not think of the one who gave these things. He is blind, entangled in emotional attachments. Jin kiya soi prav jaan hai, har ka mahal apara. One who knows that God created him reaches the incomparable mansion of the Lord's presence. Bhagat kari har ke gun gaama, nanak das tumhara. Worshipping the Lord, I sing his glorious praises. Nanak is your slave. कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो।